14 अगस्त 1947 भारत के इतिहास का वो रक्त रंजित दिन जब देश का विभाजन हुआ और लाखों लोगों ने इस बंटवारे की त्रासदी से विभाजन के कारण लोगों को अपना घर परिवार जमीन और संपत्ति भी छोड़नी पड़ी। असहनीय पीड़ा से जूझते इन मजबूर और विस्थापित लोगों को निर्मम हिंसा का सामना करना पड़ा। वर्ष 2021 में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने विभाजन की असहनीय पीड़ा और दुख से गुजरे लोगों को याद करने और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करने हेतु विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस की घोषणा की। आइए 14 अगस्त 2026 को बंटवारे और उस समय हुई क्रूर हिंसा के शिकार हुए लोगों को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करें। अपने आसपास होने वाले साइलेंट मार्च में भागीदारी करते हुए उनकी याद में एक मिनट का मौन धारण करें।

0: 14 अगस्त 1947 भारत के इतिहास का वो रक्त रंजित दिन जब देश का विभाजन हुआ और लाखों लोगों ने इस बंटवारे की त्रासदी से विभाजन के कारण लोगों को अपना घर परिवार जमीन और संपत्ति भी छोड़नी पड़ी। असहनीय पीड़ा से जूझते इन मजबूर और विस्थापित लोगों को निर्मम हिंसा का सामना करना पड़ा। वर्ष 2021 में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने विभाजन की असहनीय पीड़ा और दुख से गुजरे लोगों को याद करने और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करने हेतु विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस की घोषणा की। आइए 14 अगस्त 2026 को बंटवारे और उस समय हुई क्रूर हिंसा के शिकार हुए लोगों को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करें। अपने आसपास होने वाले साइलेंट मार्च में भागीदारी करते हुए उनकी याद में एक मिनट का मौन धारण करें।
1: காற்றலையில் நேரலையாக உங்களோடு பயணித்துக் கொண்டிருக்கும் இது திருச்சி வானொலி.
2: ஆகாஷ்வாணி திருச்சி வானொலியின் அலை வரிசைகளில் அனுபவங்கள் பேசும், நினைவுகள் மலரும், கனிந்த வாழ்வு வானொலியிலையும் தொலைக்காட்சியிலையும்

करना अंदर कटना अंदर तुंदर अंदर बंदर जूट करना अंदर सूट करना अंदर जूट करना इपड़ जो

देश का विभाजन हुआ और लाखों लोगों ने इस बंटवारे की त्रासदी से विभाजन के कारण लोगों को अपना घर परिवार जमीन और संपत्ति भी छोड़नी पड़ी। असहनीय पीड़ा से जूझते इन मजबूर और विस्थापित लोगों को निर्मम हिंसा का सामना करना पड़ा। वर्ष 2021 में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने विभाजन की असहनीय पीड़ा और दुख से गुजरे लोगों को याद करने और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करने हेतु विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस की घोषणा की। आइए 14 अगस्त 2026 को बंटवारे और उस समय हुई क्रूर हिंसा के शिकार हुए लोगों को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करें। अपने आसपास होने वाले साइलेंट मार्च में भागीदारी करते हुए उनकी याद में एक मिनट का मौन धारण करें।

0: ये आकाशवाणी दिल्ली है। कृपया हमारे विशेष प्रसारण की प्रतीक्षा कीजिए।
1: एमआरपी यानी अधिकतम खुदरा मूल्य से अधिक भुगतान ना करें। जागो ग्राहक जागो। उपभोक्ता मामले विभाग भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
2: चाहे प्रेशर कुकर हो या बच्चों के खिलौने, ISI मार्क देखकर ही खरीदें, क्योंकि BIS ISI मार्क मतलब सुरक्षा की गारंटी। जागो ग्राहक जागो। उपभोक्ता मामले विभाग भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
1: हॉलमार्क का निशान देखकर ही आभूषण लें, क्योंकि BIS हॉलमार्क मतलब गुणवत्ता की गारंटी। जागो ग्राहक जागो। उपभोक्ता मामले विभाग भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
3: जब कोई राह नजर न आए, नाल सा का साथ पाए,

0: नाल सा न्याय सबके लिए। कानूनी सहायता के लिए कॉल कीजिए 1500 पर।
1: दिस इज आकाशवाणी। ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस डे वी नाउ ब्रिंग यू ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया श्रीमती द्रौपदी मुर्मूज एड्रेस टू द नेशन।
2: ये आकाशवाणी है। स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर अब प्रस्तुत है भारत की माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू का राष्ट्र के नाम संदेश।

मेरे प्यारे देशवासियों नमस्कार। स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर आप सभी को मैं इस राष्ट्रीय पर्व की हार्दिक बधाई देती हूँ। आपसे कुछ ही घंटों बाद हमारे देश की स्वाधीनता के 80वें वर्षों का शुभारंभ होगा। देश विदेश में रहने वाले सभी भारतीय ये पर्व उल्लास के साथ मनाते हैं। हमारा तिरंगा हमारी स्वाधीनता का प्रतीक है, इसे हम पूरी शान से फहराते हैं। 15 अगस्त 1947 के दिन भारत माता पराधीनता की बेड़ियों से मुक्त हुई। सभी देशवासी स्वतंत्र भारत की नियति के निर्माता बने। हम भारत के लोग अपने सपनों को साकार करने के अवसरों का उपयोग कर सके और भारत को सर्वश्रेष्ठ राष्ट्र बनाने की भावना से कार्य करें, इसी में स्वतंत्रता की सार्थकता है। निष्ठावान विद्यार्थी और शिक्षक, विकास के लिए तत्पर वैज्ञानिक और इंजीनियर, स्वास्थ्य सेवा में कार्यरत डॉक्टर और स्वास्थ्य कर्मी, मेहनती श्रमिक और अन्नदाता किसान अपने प्रयासों से राष्ट्र निर्माण कर रहे हैं। प्रतिभावान खिलाड़ी, शिल्पकार तथा कलाकार, मार्गदर्शक बुद्धिजीवी, निजी और सार्वजनिक क्षेत्र की टीमों के कर्मठ सदस्य, जनहित में सेवारत जनप्रतिनिधि, न्याय व्यवस्था से जुड़े न्यायकर्मी, कार्यनिष्ठ सिविल सेवक, अर्थव्यवस्था में योगदान देने वाले छोटे बड़े सभी निवेशक, निस्वार्थ समाजसेवी और स्वच्छता अभियान के अग्रणी कार्यकर्ता, हमारे सभी सफाई मित्र देश की प्रगति में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। अन्य क्षेत्रों में सक्रिय असंख्य देशवासी तथा संविधान में निहित मूल कर्तव्यों का पालन करने वाले सभी नागरिक राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण भागीदार है। मैं उन सभी के हृदय से सराहना करती हूँ। तीनों सेनाओं के जवानों, सभी सशस्त्र पुलिस बलों एवं पुलिस कर्मियों की कर्तव्य निष्ठा के लिए मैं उनकी विशेष सराहना करती हूँ। विश्व पटल पर भारत का मान सम्मान बढ़ाने वाले प्रवासी भारतीयों और दूतावासों में कार्यरत देशवासियों की मैं प्रशंसा करती हूँ। प्यारे देशवासियों, स्वाधीनता के शताब्दी वर्ष 2047 तक विकसित भारत के निर्माण के लिए हम आगे बढ़ रहे हैं। अंत्योदय की भावना के साथ हमारा संकल्प है कि विकास के लाभ प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंचे। अपनी समृद्ध विरासत और स्वाधीनता संग्राम के आदर्शों को अपनाते हुए हम आधुनिक विकास के मार्ग पर अग्रसर हैं। वयं राष्ट्रे जागरूयाम, ये वेदवाक्य हमें प्रेरणा देता है कि हम राष्ट्र के लिए सदैव जागरूक रहे। हमारे स्वाधीनता संग्राम में संघर्षरत अलग अलग विचारधाराओं के लोगों का लक्ष्य एक ही था, भारत की स्वतंत्रता। स्वदेशी आंदोलन के दौरान वंदे मातरम जन जन के गीत बन गया। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के नेतृत्व में अनगिनत देशवासी स्वाधीनता संग्राम से जुड़ गए। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने समाज सुधार तथा राष्ट्र निष्ठा के उच्च आदर्श प्रस्तुत किए। भारत माता की उन सभी महान संतानों को मैं सादर नमन करती हूँ जिनके आदर्श पर चलते हुए हमारा देश स्वतंत्र हुए और आगे बढ़ा। आज 14 अगस्त के दिन को हम विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में मनाते हैं। हम उन लाखों देशवासियों को याद करते हैं जो विभाजन से जुड़े हिंसा में मारे गए या विस्थापन की त्रासदी झेलने को मजबूर हुए। सांप्रदायिक हिंसा की वजह से लाखों लोगों को शरणार्थी

करना पड़ा और बंटवारे की बीबीसी का सहन करने पड़े। फिर भी उन्होंने अपनी पहचान नहीं छोड़ी। जब हमारा देश स्वतंत्र हुए उस समय देश के विभाजन के गंभीर परिणामों के साथ साथ 550 से अधिक रियासतों को नव स्वाधीन भारत के साथ जोड़ना भी एक असाधारण चुनौती थी। सरदार पटेल ने राजशाही व्यवस्थाओं को समाप्त करके हमारे स्वाधीन लोकतंत्र में उनका विलय किया। एक कृतज्ञ राष्ट्र की ओर से आधुनिक भारत की एकता के शिल्पकार लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की पावन स्मृति को मैं सादर नमन करती हूँ। प्यारे देशवासियों, भारत के लोगों द्वारा निर्मित हमारे संविधान नागरिकों की भागीदारी पर आधारित है। लोकतंत्र की जननी भारत भूमि के निवासियों में जन भागीदारी की भावना सदा से विद्यमान रही है। उस भावना को नई ऊर्जा के साथ हमारे देशवासी आगे बढ़ा रहे हैं। राष्ट्रीय अभियानों को जन भागीदारी से आगे बढ़ाया जा रहा है, ये हमारे लोकतंत्र की प्रेरक उपलब्धि है। प्रतिष्ठा और अवसर की समानता तथा व्यक्ति की गरिमा हमारे संविधान के प्रमुख आदर्श है। आज साधारण पृष्ठभूमि के लोग अनेक क्षेत्रों में असाधारण योगदान दे रहे हैं। इससे मेरा ये विश्वास दृढ़ होता है कि आज के भारत में हर व्यक्ति बड़े सपने देख भी सकता है और उन्हें पूरी भी कर सकता है। हमारे संविधान में कार्यपालिका, विधायिका तथा न्यायपालिका के उत्तरदायित्व का स्पष्ट उल्लेख है। जनप्रतिनिधियों का कर्तव्य है कि वे विधायिका में जन आकांक्षाओं को अभिव्यक्त करें। कार्यपालिका का कर्तव्य है कि जनहित और राष्ट्रहित की नीतियों को कार्य रूप दे। न्याय व्यवस्था से जुड़े प्रत्येक व्यक्ति का ये कर्तव्य है कि अभाव के कारण कोई व्यक्ति न्याय से वंचित ना रहे। हर नागरिक को, विशेषकर वंचित वर्गों के लोगों को समानता के आधार पर सम्मान के साथ समय से न्याय मिलना चाहिए। प्यारे देशवासियों, पिछले एक दशक से कुछ अधिक समय में हमारे देश ने तेज गति से समावेशी विकास किया है। विरासत और विकास के समन्वय को प्राथमिकता दी है तथा विकास में बाधक दशकों पुराने अनेक अवरोधों को दूर किया है। हमारे देशवासी महात्मा ज्योतिबा फुले की 200वीं जयंती मना रहे हैं। महात्मा फुले और क्रांति ज्योति सावित्रीबाई फुले ने सामाजिक न्याय, शिक्षा, महिला सशक्तिकरण और समानता के क्षेत्र में ऐतिहासिक योगदान दिया है। उनके आदर्शों के अनुसार विगत कुछ वर्षों के दौरान वंचित वर्गों को आगे बढ़ाने के लक्ष्य को राष्ट्रीय प्राथमिकता दी गई है। महिलाओं की शिक्षा के क्षेत्र में सफलता के नए प्रतिमान स्थापित हुई है। 25 करोड़ से अधिक लोगों को गरीबी से मुक्ति दिलाने में सफलता मिली है। विश्व की सबसे बड़ी वित्तीय समावेश की योजना प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत लगभग 59 करोड़ खाता धारक बैंकिंग व्यवस्था से जुड़ चुके हैं। उनमें 32 करोड़ से अधिक महिला खाता धारक शामिल है। 80 करोड़ लोगों के लिए निशुल्क राशन की व्यवस्था द्वारा उनकी खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित की गई है। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 60 करोड़ लोगों को प्रतिवर्ष 5 लाख रुपया तक की निशुल्क चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराए गए हैं। किसान सम्मान निधि तथा किसान क्रेडिट कार्ड से खेती, डेयरी, मुर्गी पालन, मत्स्य पालन और मधुमक्खी पालन जैसे गतिविधियों से जुड़े किसान भाई बहनों को संबल मिला है। विश्व का इतिहास साक्षी है कि सांस्कृतिक आत्मबल पर आधारित विकास गतिमान और स्थायी होता है। आज देश में ये चेतना बलवत्ती हो रही है कि सांस्कृतिक गौरव का भाव देश की संप्रभुता को आत्मिक शक्ति प्रदान करता है। हमारे पूर्वजों ने ज्ञान विज्ञान, कला संस्कृति, अध्यात्म और सदाचार की अनमोल विरासत सौंपी है। हम विरासत और विकास के समन्वय के साथ आगे बढ़ रहे हैं। हमारा देश में विश्व का सबसे बड़ा और सबसे अच्छा डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित किया गया है। गांव की छोटी छोटी दुकानों में तथा रेहड़ी पटरी पर भी डिजिटल पेमेंट्स हो रहे हैं। विश्व में आधे से अधिक रियल टाइम डिजिटल ट्रांजेक्शन
भारत

में हो रहे हैं। हमारे देशवासियों और सरकार ने मिलकर डिजिटल क्रांति का उदाहरण विश्व समुदाय के सामने प्रस्तुत किया है। टेक्नोलॉजी का उपयोग करके सरकार ने जन कल्याण की सुविधाओं को पारदर्शी तरीके से जन जन तक पहुंचाया है। हमारे देश में हाईवेज, वाटरवेज, रेलवेज और एयरवेज के रूप में आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर का अभूतपूर्व विस्तार हुआ है। इससे नई उद्यमों के लिए अवसर उत्पन्न हो रहे हैं, नए रोजगारों का सृजन हो रहा है तथा निवेशकों का विश्वास बढ़ रहा है। प्यारे देशवासियों, विश्व के अनेक क्षेत्रों में युद्ध एवं अस्थिरता का सभी देशों पर प्रभाव पड़ रहा है। ऐसी परिस्थिति में भी हमारे देश की अर्थव्यवस्था सबसे तेज गति से बढ़ती हुई प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं के रूप में आगे बढ़ रही है। आर्थिक अनुमानों के अनुसार भारत के विकास दर विश्व की औसत विकास दर की तुलना में दोगुनी से अधिक रहेगी। आत्मनिर्भर भारत अभियान से हमारी आर्थिक प्रगति और राष्ट्रीय सुरक्षा का आधार मजबूत हुआ है। आधुनिक विकास के मार्ग पर आगे बढ़ने के साथ साथ पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में भी भारत विश्व स्तर पर अग्रणी योगदान दे रहा है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स 2030 के कुछ लक्ष्यों को हमारे देश ने समय से पहले ही प्राप्त कर लिया है। रिन्यूएबल एनर्जी के विकास को पिछले कुछ वर्षों में अभूतपूर्व गति मिली है। हमारी विदेश नीति देश हित पर आधारित है। शांति, सहयोग, संवाद तथा वसुधैव कुटुंबकम के आदर्श हमारी विदेश नीति के स्तंभ है। आर्थिक सहयोग बढ़ाने तथा पारस्परिक संबंधों को और प्रगाढ़ बनाने के लिए हमने अनेक देशों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स किए हैं। ग्लोबल साउथ के देशों में हम अग्रणी भूमिका निभा रहे हैं। विश्व पटल पर हमारे देश का सम्मान बढ़ा है। हम रूल्स बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर में विश्वास रखते हैं। हमारे प्रयास है कि संयुक्त राष्ट्र संघ सहित मल्टीलेटरल ऑर्गेनाइजेशन में विश्व समुदाय का समुचित प्रतिनिधित्व हो। हमारे इस प्रयास को अनेक देशों का प्रबल समर्थन मिल रहा है। प्यारे देशवासियों, प्राकृतिक संपदाओं पर हमारी भावी पीढ़ियों का भी उतना ही अधिकार है जितना हमारा है। हमें यह सुनिश्चित करना है कि हमारे किसी भी कार्य से आने वाली पीढ़ियों द्वारा इस अधिकार के प्रयोग में तनिक भी कमी ना हो। हमारे प्रयास होना चाहिए कि हम उनको और अधिक समृद्ध प्राकृतिक संपदाएं प्रदान करें। पर्यावरण संरक्षण के प्रति हमारी आस्था हमारी परंपरा का हिस्सा है। संताली भाषा के एक सरल गीत में हमें गहरा संदेश मिलता है। पंडित रघुनाथ मुर्मू द्वारा रचित उस गीत के कुछ शब्द इस प्रकार है। दारे गुजुक कान नेलते मिरु चणे राग बया दाया हाया गे गुजुक कान अबुआ जति धर्म दारे चेदा बाबन राग बया आबो ओना नेलते। इस गीत में एक पेड़ के पूरी तरह सूख जाने के कारण रोते हुए एक तोते का वर्णन करते हुए कवि कह रहे हैं, हे मेरे भाइयों, मरते हुए पेड़ को देखकर तोता पक्षी दुख भरी आवाजों में रो रहा है। हे मेरे भाइयों, मानव संस्कृति रूपी वृक्षों का विनाश होता देखकर हम मानव समाज के लोग विलाप क्यों नहीं कर रहे। इस गीत का संदेश ये है कि सभी मनुष्यों को मानवीय मूल्यों और प्रकृति के संरक्षण के लिए तत्पर रहना चाहिए। एक हरा हरा पेड़ मानव समाज के नैतिक और स्वस्थ रहने का प्रतीक है। एक पेड़ माँ के नाम तथा लाइफस्टाइल फॉर द एनवायरमेंट यानी लाइफ जैसे अभियानों की भावना के अनुरूप सभी को पर्यावरण संरक्षण के लिए व्यक्तिगत और सामूहिक प्रयास करना चाहिए। मेरे प्यारे देशवासियों, मुझे ये देखकर बहुत प्रसन्नता होती है कि शिक्षा के क्षेत्र में हमारे बेटियां प्रभावशाली प्रदर्शन कर रहे हैं। साथ ही कृषि उत्पादकता बढ़ाने में योगदान देने वाले ड्रोन दीदी से लेकर वायुसेना में फाइटर कॉम्बैट लीडर बनने तक विभिन्न क्षेत्रों में महिलाओं की भागीदारी बढ़ रही है। हाल ही में ग्लासगो में सम्पन्न हुए कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत के कुल 13 स्वर्ण पदकों में 8 स्वर्ण पदक बेटियों ने जीते हैं। महिलाओं की आर्थिक

आर्थिक आत्मनिर्भरता बढ़ रही है। स्वयं सहायता समूह की 10 करोड़ से अधिक महिला सदस्य है। 3 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य तय किया गया था। इस लक्ष्य को प्राप्त किया जा चुका है। अब हमारे देश 3 करोड़ महिलाओं को नई लखपति दीदी बनाने के लक्ष्य की ओर अग्रसर है। मुद्रा योजना के तहत सहायता प्राप्त करने वाले उद्यमियों में लगभग 2/3 लाभार्थी महिलाएं हैं। महिलाओं की आर्थिक आत्मनिर्भरता के प्रयासों के साथ साथ हम देख रहे हैं कि वे विभिन्न क्षेत्र में नेतृत्व प्रदान कर रहे हैं। मतदान में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी हमारी गणतंत्र की विशेष सफलता है। लोकसभा और विधानसभा में महिलाओं का 33% प्रतिनिधित्व आरक्षित करने के लिए वर्ष 2023 में नारी शक्ति बंधन अधिनियम पारित किया जा चुका है। इस अधिनियम के लक्ष्य को प्राप्त करने से महिलाओं का नेतृत्व बढ़ेगा तथा हमारे लोकतंत्र और अधिक समावेशी बनेगा। देश की कुल आबादी में 65% लोगों की आयु 35 वर्ष से कम है। ये युवा आबादी हमारी सबसे मूल्यवान संपदा है। हमारे देश के युवा टैलेंटेड है, कमिटेड है और स्किल्ड है। जमीनी स्तर पर युवाओं द्वारा किए गए विभिन्न समस्याओं के इनोवेटिव और प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस को देखकर मुझे समाज और देश के लिए उनकी प्रतिबद्धता का परिचय मिलता है। केवल 28 वर्षों की औसत आयु वाली युवा टीम द्वारा हाल ही में रॉकेट का सफल प्रक्षेपण करके अंतरिक्ष अन्वेषण के एक नए चरण का शुभारंभ किया गया है। हमारे अनेक युवा स्वरोजगार के मार्ग पर चलते हुए रोजगार प्रदान करने की संस्कृति को अपना रहे हैं। युवा उद्यमियों की भागीदारी से हमारे देश में एक मजबूत स्टार्टअप इकोसिस्टम विकसित हुआ है। विश्व के बड़े बड़े उद्यम भारत के युवाओं की प्रतिभा और लगन से प्रभावित रहते हैं तथा उन्हें नेतृत्व की भूमिकाओं में नियुक्त करते हैं। ऐसे युवाओं ने विश्व समुदाय में भारत की युवा शक्ति की साख बढ़ाए हैं। हमारी युवा पीढ़ी भारत के स्वर्णिम भविष्य के प्रति मेरी आस्था को और प्रबल बनाती है। हमारे विद्यार्थी भारत के भविष्य निर्माता है। जिस तरह राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए सरकार और समाज का एकजुट रहना जरूरी है, उसी तरह विद्यार्थियों के वर्तमान और भविष्य की सुरक्षा के लिए भी सभी के सम्मिलित प्रयास जरूरी है। सार्वजनिक परीक्षाएं विद्यार्थियों के लिए अवसर के द्वार खोलती है, इसीलिए सरकार इन परीक्षाओं में सुधार के लिए व्यापक कदम उठा रही है। इन सुधारों का उद्देश्य है कि सार्वजनिक परीक्षाओं में अनुचित साधनों पर पूरी तरह से अंकुश लगे, परीक्षा प्रणाली और अधिक पारदर्शी तथा युवाओं के लिए सुरक्षित एवं भरोसेमंद हो। सरकार के प्रयासों तथा नई आर्थिक गतिविधियों से युवाओं के लिए अनेक प्रकार के नए अवसर उत्पन्न हो रहे हैं। ऐसे अवसरों के बारे में जानकारी प्राप्त करके हमारे युवा सफलता के नए मार्ग चुन सकते हैं। हमारे युवाओं का शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य देश के भविष्य का आधार है। परिवार और समाज की भी जिम्मेदारी है कि हमारे युवा उत्साह के साथ आगे बढ़ते रहे। खेल कूद को युवाओं के विकास और राष्ट्र निर्माण के माध्यम के रूप में अपनाया जा रहा है। खेलो इंडिया कार्यक्रम के तहत स्थानीय स्तर से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक देश के सभी क्षेत्र के लिए स्पोर्ट्स इकोसिस्टम उपलब्ध कराया जा रहा है। खेलकूद को बढ़ावा देने के लिए सरकार अभूतपूर्व निवेश कर रही है। इन प्रयासों के अच्छे परिणाम सामने आ रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतिस्पर्धा में हमारे खिलाड़ी प्रदर्शन और उपलब्धियां के उच्च शिखरों तक पहुंच रहे हैं। एक और हमारे देश में सबसे बड़ी युवा आबादी है तो दूसरी ओर वरिष्ठ नागरिकों की संख्या भी निरंतर बढ़ रही है। सरकार ने वरिष्ठ नागरिकों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए अनेक कदम उठाए हैं। 70 साल और उससे अधिक आयु के लगभग 6 करोड़ वरिष्ठ नागरिकों के लिए प्रतिवर्ष 5 लाख रुपए तक की निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा सुविधाएं उपलब्ध है। वरिष्ठ नागरिकों के प्रति अपनेपन की भावना तथा उनके आत्मसम्मान को बनाए रखने के लिए पूरे समाज को
संवेदनशील रहना

चाहिए। प्यारे देशवासियों, सत्य और न्याय के पक्ष में मानवता विरोधी शक्तियों पर विजय प्राप्त करने की भारतीय परंपरा पर हम गर्व करते हैं। 26 जुलाई को हमने कारगिल विजय दिवस मनाया है। उसके पहले 7 मई को ऑपरेशन सिंदूर के आरंभ का 1 वर्ष पूरा होने पर हमने अपनी सेनाओं के अतुल्य पराक्रमों को स्मरण किया। आतंकवाद के विरुद्ध ओ ऐतिहासिक ऑपरेशन भारतीय सेनाओं की अचूक क्षमता का प्रमाण है। आतंकियों और उनके समर्थकों को ये कठोर संदेश दिया गया कि वे चाहे कहीं भी जाकर छुप जाए, लेकिन उन्हें अपने किए की सजा जरूर मिलेगी। आतंकवाद को संरक्षण देने वाले देश के साथ अतीत में की गई सिंधु जल संधि का निलंबन करना हमारे देश के विशेषकर किसानों के हित में एक निर्णायक कदम है। दशकों से नक्सलवाद देश के लिए गंभीर चुनौती बना हुआ था। भारत को नक्सल मुक्त बनाना एक बड़ी उपलब्धि है। अब नक्सल प्रभावित क्षेत्र में उत्साह का वातावरण है तथा विकास की सर्वस्पर्शी धारा प्रवाहित हो रही है। बस्तर ओलंपिक्स में खिलाड़ियों ने, बस्तर पंडुम में कलाकारों ने तथा इन आयोजनों में दर्शकों ने भारी संख्या में हिस्सा लिया। राष्ट्र गौरव की रक्षा हेतु निर्मित मराठा सैन्य परंपरा से जुड़े 12 दुर्गों को पिछले वर्ष यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में स्थान दिया गया है और इस वर्ष भगवान बुद्ध के प्रथम प्रवचन के स्थल सारनाथ को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल किया गया है। भारत भूमि में एक और भगवान बुद्ध से जुड़े आध्यात्मिक स्मारक है तो दूसरी ओर आत्मसम्मान तथा अपनी गौरवशाली परंपराओं की रक्षा हेतु युद्ध करने की हमारी प्रभावशाली क्षमता के प्रतीक भी विद्यमान है। मेरे प्यारे देशवासियों, सभी भारतवासियों का विकास और कल्याण ही विकसित भारत के निर्माण का वास्तविक लक्ष्य है। तेलुगु भाषा में रचना करने वाले महान राष्ट्रवादी साहित्यकार गुर्जाड़ा अप्पा राव ने अपने एक गीत में सभी भारतवासियों को देश प्रेम का अमूल्य संदेश दिया है। उन्होंने कहा है, देश मुन्नु प्रेमिंचु मन्ना, मंची अन्नदे पेंचु मन्ना, देश मंटे मट्टी का दोई, देश मंटे मनुष्य लोए। इन पंक्तियों का भाव है, देश से प्रेम करो, भलाई को बढ़ाओ। देश का अर्थ केवल मिट्टी ही नहीं है, देश का अर्थ समस्त जन समुदाय है। मुझे विश्वास है कि समाज की भागीदारी और सरकार के प्रयासों से गांव-गांव में, नगर-नगर में, भारत के घर-घर में रहने वाले सभी लोग स्वस्थ, सुखी और समृद्ध बनेंगे। आइए देश प्रेम की इसी सर्वसमावेशी भावना के साथ हम सब स्वतंत्र भारत को विकसित भारत बनाने की राष्ट्रीय साधना में स्वयं को समर्पित करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। माय डियर फेलो सिटीजन्स, नमस्कार। ऑन द ईव ऑफ आवर इंडिपेंडेंस डे, आई कन्वे माय वार्म ग्रीटिंग्स टू ऑल ऑफ यू फॉर दिस नेशनल फेस्टिवल। इन ए फ्यू आवर्स फ्रॉम नाउ, our country will witness the auspicious beginning of the 80th year since its independence. All Indians living in the country and abroad celebrate this festival with great joy. Our tricolor is the symbol of our freedom. We unfurl it with immense pride. On the 15th of August 1947, Bharat Mata was liberated from the shackles of subjugation. Every citizen became an architect of the destiny of independent India. The true meaning of freedom lies in ensuring that all citizens are able to utilize opportunities to fulfill their aspirations and work towards the goal of making India the foremost nation in the world. Dedicated students and teachers, scientists and engineers committed to development, doctors and healthcare workers providing health services, industrious workers and our annadata farmers are all contributing to nation building through their efforts. Talented sports persons, craft persons and artists
विजनरी इंटर

0: On the eve of Independence Day, you were listening to Honorable President of India, Shrimati Draupadi Murmu's address to the nation.
1: स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर अभी आप भारत की माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू का राष्ट्र के नाम संदेश सुन रहे थे।
2: एमआरपी यानी अधिकतम खुदरा मूल्य से अधिक भुगतान ना करें। जागो ग्राहक जागो। उपभोक्ता मामले विभाग भारत सरकार द्वारा जनहित में

0: जारी।
1: जब भी हेलमेट खरीदें या कोई इलेक्ट्रॉनिक सामान BIS ISI मार्क देखकर ही खरीदें, क्योंकि जान है तो जहान है। जागो ग्राहक जागो। उपभोक्ता मामले विभाग, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
0: किसी भी उपभोक्ता शिकायत के लिए 1915 पर कॉल करें। जागो ग्राहक जागो। उपभोक्ता मामले विभाग, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
2: ये प्रसारण आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से किया गया।

0: तन समर्पित, मन समर्पित और यह जीवन समर्पित। चाहता हूँ देश की धरती तुझे कुछ और भी दूं। जी हाँ, यही वो भाव थे जिसने हमारे देश की आजादी के आंदोलन को प्रबल बनाया था, और यही वो भाव हैं जो कि आज भी हमारे देश की सीमाओं को अक्षुण रखे हुए हैं। और जब बात होती है देश प्रेम की, और मौका है स्वतंत्रता दिवस के पावन अवसर का, और देश मना रहा है वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ, तो ऐसे में वंदे मातरम को और करीब से जानने के लिए मैं रुचि जोशी आपके लिए लेकर आई हूं हमारा स्पेशल पॉडकास्ट, जो कि रक्षा मंत्रालय और ऑल इंडिया रेडियो के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित किया जा रहा है। और वंदे मातरम को और करीब से जानने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर भुवन झा, जो कि दिल्ली विश्वविद्यालय के इतिहास विभाग में एसोसिएट प्रोफेसर हैं। स्वागत है सर।
1: नमस्कार
0: सर। सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि वंदे मातरम का क्या संदर्भ है, क्योंकि इसकी महत्ता बहुत ज्यादा है। ये सिर्फ एक गीत नहीं बल्कि हमारे देश की आजादी का एक विजय घोष रहा है, तो इसका हमें थोड़ा इतिहास के बारे में बताइए, और आनंद मठ में इस गीत को लेने का क्या उद्देश्य था सर?
1: देखिए, यह विजय घोष भी है और मंत्र भी है
0: जी।
1: यह एक परतंत्र देश की आजादी का मंत्र है और एक अपनी धरातल तलाशने का मंत्र है। जिस युग में बंकिम जी रहे थे, लिख रहे थे, वह भारतीय बौद्धिक जगत के उत्कर्ष का समय था। लोग अलग अलग धुरी ढूंढ रहे थे। एक जो पाश्चात्य दर्शन का प्रभाव था, उसके विरोध में भी एक सांस्कृतिक जागरण हो रहा है। और आप देखेंगे कि जो ब्रह्मों का प्रभाव है, जो एक मोनोथिज्म की बात हो रही थी और जो बार बार उपनिषदों की बात हो रही थी, वेदांत की बात हो रही थी, उससे आगे बढ़कर बंकिम पुराणों की बात कह रहे हैं, भागवत की बात कह रहे हैं, कृष्ण की बात कह रहे हैं, गीता की बात कह रहे हैं, और जो सगुण जो ईश्वर है उसको निराकार ब्रह्म से जोड़ करके एक जनमानस को संचालित करने की कोशिश कर रहे हैं। जब आनंद मठ की रचना करते हैं, तब तक वह इस निष्कर्ष पर पहुंच चुके हैं कि जो भारत का शोषण हुआ पिछले 100-150-200 वर्षों में, उससे कैसे निजात दिलाई जाए। और जो आर्थिक राष्ट्रवादी थे, वो पहले से इन बातों को लिख रहे थे कि बहुत ज्यादा शोषण हुआ है, लेकिन इनका एक अलग तरह का दृष्टिकोण था। इनका दृष्टिकोण यह था कि जिस तरह से यहां पर एक स्व का नाश हुआ, जो लोगों का जो कॉन्फिडेंस है वो खत्म हुआ, संस्कृति का ह्रास हुआ, हमने पाश्चात्य मापदंडों को अपनी प्रगति का सूचक मान लिया, जो हमारे नैतिक मूल्य थे उसको हमने उतनी तवज्जो नहीं दी, उतना मूल्य प्रदान नहीं किया नैतिकताओं को, और वह राके और हडर को पढ़ चुके थे। जैसे राके और हडर ये कह रहे हैं कि हर युग का अपना एक इतिहास है, हर सभ्यता का अपना एक मूल्य है, तो अलग अलग युगों में यदि सभ्यताएं हों या अलग अलग जगहों में यदि कोई सभ्यताएं हों, तो उसको एक ही मापदंड से नहीं जांचना चाहिए। तो उन्होंने भारत के विकास को, उस समय के इतिहास को नापने के लिए उसके मूल्यों को ही धरातल में बेस बनाने की कोशिश की, इसलिए उनका मूल्यांकन बिल्कुल अलग तरह का है। आनंद मठ एक ऐसे सन्यासी विद्रोह की गाथा है, जो विद्रोह कर रहा, जो जिस तरह से बंगाल में शोषण हुआ उसके विरोध में उठ खड़ा हुआ है, और जंगल में एक आनंद मठ बनाते हैं, एक मठ बनाते हैं जहां जो लोग रह रहे हैं सत्यानंद के नेतृत्व में, वह सब अपने को संतान मानते हैं। वहीं उनको सत्यानंद उनको इंस्पायर करने के लिए, उन लोगों को इंस्पायर करने के लिए वंदे मातरम गीत गाते हैं। यह इसका संदर्भ है, और इसको 1896 में रविन्द्रनाथ टैगोर ने भी गाया, धुन भी दिया और इसको गाया भी राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में। लेकिन जब स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ 1905 में, तो इसको एक बहुत बड़ा राजनीतिक आधार मिल गया, वहीं से यह स्वतंत्रता का गीत बनता गया।
0: तो सर, जैसे आपने बताया कि हमारे देश में जो आजादी का दौर था, कहीं ना कहीं लोग स्व को भूल चुके थे, स्वदेशी को भूल चुके थे, और वंदे मातरम ने उनको याद दिलाया कि स्व क्या होता है। तो सर, हम आपसे थोड़ा विस्तार में जानना चाहेंगे कि स्वदेशी आंदोलन जब चल रहा था और जब बंगाल विभाजन का दौर था 1905 का, तो उस समय वंदे मातरम ने किस तरीके से लोगों के मन में देश के लिए, स्वदेश के लिए एक भाव उत्पन्न किए, उसका क्या रोल था सर?
1: देखिए, यदि आप थोड़ा और पृष्ठभूमि में जाएंगे
0: जी,
1: और जो कांग्रेस पार्टी बनी, एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म बना, वहां वह अंग्रेजों का विरोध उस हिसाब से नहीं कर रहे हैं जैसा कि लोगों की इच्छा थी। वह भारतीयों के मुद्दों को पहुंचा रहे हैं, लेकिन जो मॉडरेट

0: फेज है इंडियन नेशनल कांग्रेस का, वह ब्रिटिश पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी की तरफ देख रहा है, वह ब्रिटिश सेंस ऑफ जस्टिस की बात भी कह रहा है, उसके उससे इतर होकर के एक अलग तरह का भाव उत्पन्न हो रहा है। इसमें शिवाजी, कृष्ण और शक्ति, इन तीनों को फिर से उठाने की, उभारने की कोशिश हो रही है। कृष्ण चरित लिखा बंकिम चंद्र ने भी, अरबिंदो ने भी बाद में लिखा, गीता रहस्य तिलक ने लिखा, ब्रह्म बांधव उपाध्याय थे जो कि क्रिश्चियन धर्म में कन्वर्ट कर गए थे, उन्होंने भी कृष्ण तत्व लिखा, रोमेश चंद्र दत्त ने महाराष्ट्र जीवन प्रभात लिखा, टैगोर ने 1904 में शिवाजी पर एक छोटा सा पैम्फलेट लिखा, एक निबंध लिखा, और शिवाजी उत्सव इन्होंने मनाया, तिलक ने मनाया, और शक्ति और तंत्र जो पूर्वी भारत में बहुत पुराने समय से चला आ रहा है उसको बंकिम ने पुनर्जीवित किया एक बड़े जनसमूह जनसामूहिक स्तर पर। इसलिए आप देखेंगे कि शक्ति की आराधना हो रही है। जब पार्टीशन ऑफ बंगाल होता है, जब बंगाल का विभाजन होता है और वह सांप्रदायिक आधार पर हो रहा है, हिंदू मुसलमानों को विभाजित करने के लिए हो रहा है, तो एक बड़ा विद्रोह शुरू होता है बंगाल, और लोगों को लगता है कि हमें इमैस्कुलेट कर दिया गया, हमें तो पूछा ही नहीं जो इतना बड़ा कदम उठाया, जो जिसका प्रभाव हमारे जीवन पर इतना पड़ना है उसका निर्णय अंग्रेजों ने खुद ही ले लिया। तो उसके विरोध में बहुत बड़ा आंदोलन शुरू हुआ और वह आंदोलन जो पार्टीशन विरोधी आंदोलन है वह धीरे धीरे स्वदेशी आंदोलन में परिवर्तित हो गया, उसका सकारात्मक पक्ष भी आ गया। जब वह स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ, जब पार्टीशन का विरोध शुरू हुआ, वहां वंदे मातरम एक मंत्र के रूप में उभर करके आया और उसी ने इंस्पिरेशन, द मोस्ट पॉपुलर सॉन्ग ऑफ द स्वदेशी आंदोलन वॉज वंदे मातरम। उसी प्रभात फेरी में भी वही गाया जा रहा है, जो कॉन्फ्रेंसेज हो रहे हैं वहीं पर गाया जा रहा है, कुछ इस हद तक कि 1905 से 8 के बीच में लोकल कमिटीज ने, लोकल इंटेलिजेंस एजेंसीज ने वंदे मातरम गाने पर कई जगहों पर रोक भी लगा दी। और 1906 ईस्वी में जो कांग्रेस का अधिवेशन था कलकत्ता में, वहां टैगोर के परिवार की सरला देवी चौधरानी को गोखले ने बुलाया गाने के लिए, उन्होंने गाया, लेकिन इशारा यह था कि इतना स्पष्ट मत गाइए कि लोगों को पता चल जाए, अंग्रेजों को पता चल जाए कि ये वंदे मातरम का ही गायन हो रहा है। तो जहां 7 करोड़ का फिगर था उसको उन्होंने 30 करोड़ का फिगर बना दिया।
1: अच्छा,
0: तो उस तरह से थोड़ा बहुत एब्रीविएट करके उसको सरला देवी चौधरानी ने गाया
1: जी।
0: और 1906 में ही बारिसाल में एक बहुत बड़ा आंदोलन शुरू हुआ, अप्रैल 1906 में। आप मान सकते हैं कि जनमानस के, मतलब एक बड़े समूह में पहली बार इसको गाया गया, जिस पर कि लाठीचार्ज हुआ, इसको बैन किया गया, सुरेंद्रनाथ बनर्जी लीड कर रहे थे, इन सबको अरेस्ट किया गया, अश्विनी दत्त वहां के लोकल लीडर थे, और वहां से यह और भी विस्तार हुआ। बिपिन चंद्र पाल ने वंदे मातरम अखबार शुरू किया और कुछ ही महीनों में उसका एडिटरशिप अरबिंदो ने ली, तो अरबिंदो ने बंकिम को राष्ट्रीय ऋषि की संज्ञा दी, और एक और अखबार वह संपादित करते थे सांध्य, तो सांध्य में उन्होंने लिखा कि हर शहर में, हर गांव में आनंद मठ बनना चाहिए। यदि हर शहर में, हर गांव में आनंद मठ बनेगा तो जो 7 करोड़ लोग है जिसकी चर्चा वंदे मातरम में हो रहा है, और 1872 के सेंसस पर आधारित था वो फिगर, और जो 14 करोड़ भुजाएं हैं वह अवतरित हो जाएंगी, वह आगे आ जाएंगी मातृभूमि की रक्षा करने के लिए। वह जो इंस्पिरेशन है वह आगे बढ़ाने का काम अरबिंदो ने किया। अरबिंदो की भाषा बहुत प्रखर थी, अरबिंदो वॉज ए वेरी जीनियस, वॉज ए वेरी एक्सेप्शनल माइंड, तो उनकी लेखनी का असर बहुत ज्यादा हो रहा था। और वंदे मातरम सिर्फ वही नहीं रुका, आप देखेंगे कि महाराष्ट्र में, पंजाब में, उत्तरी भारत में, दक्षिणी भारत में, हर जगह वंदे मातरम गाया जा रहा है
1: जी।
0: और विदेश में भी 1906 में जब यह आंदोलन जोर पकड़ रहा है तो बंगाल में वंदे मातरम की का झंडा भी फहराया जा रहा है, जहां बीच में वंदे, और 3 रंग का है, बीच में वंदे मातरम लिखा हुआ है, उसी तरह का झंडा, एग्जैक्टली सेम नहीं, कलर पैटर्न वही है लेकिन फोटोग्राफ्स कुछ अलग हैं, उसी तरह का झंडा मैडम भिकाजी कामा ने स्टुगर्ट में 1907 में जब इंटरनेशनल सोशलिस्ट कॉन्फ्रेंस हो रहा था, उन्होंने उस झंडा को वहां फहराया, जिसको हम इतिहासकार यह भी मानते हैं कि पहली बार भारतीय झंडा को फहराया गया वहां पर और मैडम भिकाजी कामा ने वंदे मातरम अखबार भी शुरू करवाया, सपोर्ट किया वहां पर, पहले जिनीवा में और बाद में बर्लिन में
1: जी।
0: और उसके हरदयाल, जो लाला हरदयाल जो वहां से आए थे अमेरिका से, उन्होंने उसको संपादित करना शुरू किया, यहीं दिल्ली से गए थे पहले
1: जी जी।
0: और वीवीएस अय्यर ने भी किया, वीरेंद्रनाथ चट्टोपाध्याय ने भी किया। उस वंदे मातरम की जब प्रति महाराष्ट्र में आ रही थी तो यहां पर उसको बैन लगा दिया गया।

0: तो वंदे मातरम जो एक्सपैट्रिएट इंडियंस हैं, रिवोल्यूशनरी जो हैं, जो विदेशों में रह रहे हैं, उसको भी इंस्पायर करने का काम कर रहा है। देश में तो है ही, जैसे आप दक्षिण भारत में जाएंगे तो वहां भी वंदे मातरम गाया जा रहा है। और इस अवधि में 1908 के बीच में कई भारतीय भाषाओं में इसका अनुवाद हुआ। जो बहुत बड़े राष्ट्रवादी कवि थे सुब्रमण्यम अय्यर तमिलनाडु के, उन्होंने दो बार इसका अनुवाद किया, दो अलग अलग संदर्भों में, 1905 में 1908 में। गुजराती में भी इसका अनुवाद हुआ, मराठी में हुआ, तेलुगु में हुआ, मलयालम में हुआ, उर्दू में हुआ, हिंदी में हुआ, कई भाषाओं में दर्जनों से ज्यादा ट्यून बने। आज के समय में देखेंगे तो 100 से ज्यादा ट्यून आपको मिलेंगे वंदे मातरम का। और कुछ जो संस्कृति विभाग ने एक वेबसाइट डिजाइन करके उसमें बहुत सारे ट्यून रखे भी हैं, जो अलग अलग ट्यून में कब कब गाए गए गाना को। तो यह अद्भुत है, इसमें इंस्पिरेशन है और इसके शब्द और इसका धुन, वह दोनों ही कहीं ना कहीं लोगों को प्रभावित करता है आगे बढ़ने के लिए।
1: तो सर, जैसे आपने मेंशन किया कि वंदे मातरम को उस समय काफी जगह बैन कर दिया गया था, तो क्या हम कह सकते हैं कि जो हमारा स्वाधीनता संग्राम था उसमें वो बैन करना वंदे मातरम एक कैटलिस्ट के रूप में उभर के आए?
0: बिल्कुल बिल्कुल, जब आप किसी चीज को बैन करते हैं तो लोग और उसको गाना चाहते हैं। और कोई ऐसा नहीं है कि कोई अखिल भारतीय स्तर पर कोई कानून बन गया इसको बैन करने का। लोकल लेवल पर डिसीजन लेते थे कि ये सेडिशस सॉन्ग्स है, ये अंग्रेज विरोधी गाना है, ये साम्राज्य विरोधी गाना है, तो लोकल लेवल पर इसको बैन करते थे। उससे लोग और अलग अलग ढंग से, जैसे कभी गा नहीं रहे लेकिन बैच लगा लिया, झंडा उठा लिया, क्योंकि झंडा को आपने बैन नहीं किया तो झंडा उठा लिया, कभी बैच लगा लिया, कभी गा रहे हैं तो उसमें कुछ शब्द बदल दिए, और इस तरह से वंदे मातरम। और देखिए, जो क्रांतिकारी वर्ग है
1: जी,
0: 1905 से 6 ईस्वी से क्रांतिकारी वर्ग बड़े स्तर पर उभरता है, उससे पहले थोड़ा सा सीमित है, महाराष्ट्र में है, चापेकर ब्रदर्स हैं, सावरकर ने अभिनव भारत की रचना की है, बनाया है, निर्माण किया, और शिफ्ट थोड़ा सा इंग्लैंड में इंडिया हाउस बनाया श्यामजी कृष्ण वर्मा ने, वहां कई कई सारे क्रांतिकारी जिसमें कि सावरकर भी 1906 में शामिल होते हैं, वो इकट्ठा होते हैं। लेकिन बंगाल के भीतर जो अनुशीलन और जुगांतर दो सबसे बड़े सीक्रेट सोसाइटीज हैं, इसी समय में आगे बढ़ते हैं। जितने क्रांतिकारी देखेंगे वो कहीं ना कहीं इन चीजों से इंस्पायर हो रहे हैं।
1: तो इसीलिए वंदे मातरम एक कैटलिस्ट के रूप में उभरा। और जैसे आपने मेंशन किया कि सर विदेशों में भी वंदे मातरम गाया गया था, तो विदेशों में इसका क्या इम्पैक्ट था और उसका हमारे देश की जो आजादी की लड़ाई थी उसमें क्या प्रभाव पड़ा?
0: देखिए, जो एक्सपैट्रिएट इंडियंस हैं, जो रिवोल्यूशनरीज हैं, वो अमेरिका में भी हैं, कनाडा में भी हैं, इंग्लैंड में भी हैं, और जो मिडिल ईस्ट है उसके कुछ देशों में भी हैं। वहां जहां पर इनको यह लग रहा है कि कानूनी रूप से इसका विरोध नहीं है, वहां उसको लिखने का गाने का इस तरह की परंपरा है। और श्यामजी कृष्ण वर्मा तो इंडियन सोशियोलॉजिस्ट अखबार निकाल रहे थे इंग्लैंड में, उसमें काफी लिख रहे थे, और वो फिर यहां पर भी इम्पोर्ट होते थे, यहां पर भी आता था, यहां कई बार उसको बैन भी किया गया। अर्थ यह है कि जो वंदे मातरम का एक कांग्रेस के अधिवेशनों में गाया जा रहा है, जो गांधी द्वारा आंदोलन चलाए जा रहे हैं उसमें गाया जा रहा है, लेकिन जो सीक्रेट सोसाइटीज, जो क्रांतिकारियों का समाज है, जहां छुप करके बहुत तरह का काम करते हैं, वहां इसकी लोकप्रियता बनी हुई। जो नौजवान भारत सभा जो शुरू किया भगत सिंह ने, उसमें गाया जाता था, उसके दस्तावेज में लिखा हुआ है। और कई सारे क्रांतिकारी जो शहादत में जा रहे हैं, जो अपने को आहूत कर रहे हैं, वह वंदे मातरम उस समय भी गा रहे हैं जब उनको दंड के लिए ले जाया जा रहा है, जब वो शहादत के लिए जो अपनी आहुति देने जा रहे हैं उस समय भी। रामप्रसाद बिस्मिल का नाम है, सूर्य सेन का नाम है, खुदीराम बोस के प्रोसेशन में जब उनकी शव यात्रा हो रही है, उनका जब प्रोसेशन हो रहा है, तो उसमें लोग गा रहे हैं वंदे मातरम को, और वो बहुत कम उम्र के थे। तो इस तरह से, और सरदार उधम सिंह जब वह भी जा रहे हैं, और उनके जो स्टेटमेंट्स हैं, जब वो स्टेटमेंट दे रहे हैं कोर्ट में, तो वहां पर भी वंदे मातरम लिख करके उसको खत्म करते हैं, शुरू करते हैं, खत्म करते हैं। वंदे मातरम एक सैल्यूटेशन हो गया कि एक दूसरे को क्रांतिकारी एड्रेस कर रहे हैं वंदे मातरम कह करके। और जब उनको लग रहा है कि हम अल्टीमेट सेक्रीफाइस कर रहे हैं, तो कौन सा शब्द सबसे उपयोगी होगा, सबसे अप्रोप्रिएट होगा, तो वह है वंदे मातरम।
1: सर, जैसे आपने कहा कि क्रांतिकारियों के लिए एक ये सैल्यूटेशन बन गया था वंदे मातरम, तो जो वंदे मातरम की अगर हम लिरिक्स पे जाते हैं तो उसमें है त्वम ही भक्ति, त्वम ही शक्ति, त्वम ही प्राणा शरीरे, तो कहीं ना कहीं ये लाइन ही दर्शाती है उनके समर्पण को।
0: बिल्कुल बिल्कुल, यदि आप इसके लिरिक्स को देखेंगे, वंदे मातरम के शब्दों को देखेंगे, तो ये अद्भुत है।

0: जी
1: यह किसी युग में किसी दौर में एक ही बार लिखा जा सकता है, ये बार बार यह अवतरित नहीं हो सकता है।
0: बिल्कुल सर,
1: जिस भाव में बंकिम ने लिखा होगा, जिस मनःस्थिति में, वह अद्भुत रहा होगा, वह इतिहास के एक मील का पत्थर है। इसमें देखेंगे कि प्रकृति की चर्चा भी है, भारत के भूगोल की चर्चा भी है, और उस भूगोल में मातृत्व को, जो मदर इंडिया है, जो भारत को शक्ति के रूप में अवतरित करने की बात है, दिखाने की बात है, वो अलग तरह की है, वह अत्यंत अन्यत्र दुर्लभ है। जैसे हवाओं की बात कह रहे हैं कि जो दक्षिण से जो शीतल हवाएं आ रही हैं, और खेत खलिहानों की बात है, ग्रीन कलर की बात है, जल की बात है, सुजलाम सुफलाम, फल मतलब कोई भी चीज जो प्रोड्यूस हो रही है, जल जो मतलब एक सेक्रेटनेस है जल के प्रति हमारे हिंदुस्तानियों का, उसको मैं प्रणाम करता हूं। और देखिए 1872 के सेंसस से 7 करोड़ का फिगर लिया बंकिम ने, क्योंकि 1875 में इसकी रचना हो रही है, और यह कह रहे हैं कि माता, क्योंकि यह बार बार स्पष्ट हो रहा है कि इतने सारे हमारे देश में इतने लोग हैं, फिर भी भारत माता परतंत्र क्यों है, हम शक्तिहीन क्यों हैं। तो कह रहे हैं कि 7 करोड़ संतानें हैं, और आनंद मठ में सत्यानंद लोगों को बार बार संतान कहकर बोलते हैं कि हम लोग सब संतान हैं। तो 7 करोड़ संतान हैं और 14 करोड़ भुजाएं हैं, उन 14 करोड़ भुजाओं में जो तलवारें हैं, इतनी शक्ति है, तो यह माता अबला कैसे हो सकती है। कहते हैं माता को कि आप ऐसे, इतनी शक्ति है तो आप अबला कैसे हो सकती है। उसके बाद विद्या की बात कह रहे हैं, सरस्वती, लक्ष्मी और दुर्गा, इन तीनों का बार बार जिक्र आ रहा है प्रतीक के रूप में। विद्या का जिक्र आ रहा है, शक्ति का जिक्र आ रहा है, दुर्गा का जिक्र आ रहा है, उसके 10 आयुधों का जिक्र आ रहा है, जो इंस्पायर करता है लोगों को युद्ध में जाने के लिए, प्रेरित करता है कि आप किसी भी तरह का परतंत्रता अधीनता स्वीकार न करें। और फिर वह आनंद मठ में एड्रेस करते हैं कि आप ही भक्ति हैं, आपके हृदय में ही मर्म है, जितने शरीर हैं संतानों के सबके प्राण आप ही हैं, तो वहीं से उद्गम स्थल है। जो उद्गम स्थल है, जिसको आप मातृत्व कहते हैं, वही असली शक्ति का स्रोत है। उसको बार बार नमामि कह रहे हैं, प्रणाम कह रहे हैं। इससे अच्छा इंस्पिरेशनल सॉन्ग क्रांतिकारियों को मिल नहीं सकता।
0: बिल्कुल सच बात है सर, कि इससे ज्यादा इंस्पिरेशनल सॉन्ग न तब मिल सकता था, और आज के परिपेक्ष में सर अगर हम देखें तब भी मुझे लगता है कि इसके भाव उतने ही सार्थक हैं। आपका क्या विचार है?
1: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जो देखिए, जो अधीनता है, परतंत्रता है, सशक्तिकरण है, विकास है, यह हमेशा चलता रहा। ठीक है कि हम अंग्रेजों के गुलाम थे और उससे, उस गुलामी से हमें निजात मिला, हम स्वतंत्र हो गए, लेकिन यात्रा वहां स्वतंत्रता के साथ ही खत्म नहीं होती। यात्रा लगातार चलती रहती है। हम एक इंटरनेशनल कम्युनिटी के हिस्सा हैं, एक कॉम्पिटिशन का दौर है, और यह मान करके चलिए कि हमेशा आप सुरक्षित नहीं हो सकते, तो आपको सजग भी रहना। जब आप सजग रहते हैं तभी आप सुदृढ़ हो सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। जब आप अपने बॉर्डर्स को सुरक्षित कर रहे हैं, आप अंदरूनी कुछ, मान लीजिए विद्रोह हो रहा है, उसको, उससे देश को सुरक्षित कर रहे हैं, तो आपको हमेशा कुछ इंस्पिरेशन चाहिए। वह इंस्पिरेशन वंदे मातरम देता है, क्योंकि हम जब भी लड़ते हैं, जब हमारा सैनिक लड़ता है या हमारे पैरामिलिट्री फोर्सेज लड़ते हैं, तो उसके दिमाग में हमेशा यही होता है कि हम अपने मदरलैंड की सुरक्षा कर रहे हैं, हम भारत माता की सुरक्षा कर रहे हैं। और देखिए, जब वंदे मातरम पॉपुलर हुआ 1905-6 में, उसी समय में भारत माता की तस्वीर भी बनती, उसकी 4 भुजाएं हैं, उसमें वस्त्र है, अन्न है, शिक्षा है, दीक्षा है, ये चार अंग हैं उसके। और जो वंदे मातरम का मंत्र है, वह इस भारत माता की तस्वीर से जुड़ जाता है। जो मैप है उसको एक विजुअल शेप मिल जाता है, जिससे कि आप अटैच हो सके। एक सैक्रेडनेस है कि देश सैक्रेड है, दिस हैज टू बी प्रोटेक्टेड, द कंट्री हैज टू बी प्रोटेक्टेड। इसी इंस्पिरेशन से फौज लड़ती है, देश की सुरक्षा करती है, इसीलिए यह आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना कि स्वदेशी आंदोलन के समय में था।
0: बिल्कुल सही आपने कहा कि जब भी हमारे सैनिक लड़ते हैं तो वो इसी भाव से लड़ते हैं सर, चाहे सियाचिन की दुर्गम पहाड़ियां हों या फिर इंडियन ओशन का विशाल समंदर, तो दोनों ही जगह जो हमारे सैनिक तैनात होते हैं उनके अंदर यही भाव होते हैं वंदे मातरम के, और सर यही है जो उनके मोराल को अपलिफ्ट करता है। तो सर वर्तमान

0: परिपेक्ष में अगर देखें तो उन सैनिकों के लिए आपका क्या संदेश है?
1: उन सैनिकों के लिए यही संदेश है कि जितने तरह के लोग इस देश में सेवा कर रहे हैं वह सेवा सबसे बड़ी है, जो देश के चौहद्दी की सुरक्षा कर रहे हैं और अपने जान पर खेल करके सुरक्षा कर रहे हैं, उससे बड़ा पुण्य का कार्य हो नहीं सकता है, उससे बड़ा धर्म हो नहीं सकता है, उससे बड़ा समर्पण हो नहीं सकता, वह अतुलनीय है।
0: सर, हमारे सैनिक जो अभी लड़ रहे हैं उसमें जैसे हमने देखा कि विमेन एम्पावरमेंट भी काफी हो रहा है, चाहे महिलाएं हैं वो लड़ाकू विमान भी उड़ा रही हैं, और जब हम वंदे मातरम के परिपेक्ष में ये चीज देखते हैं तो उसमें एक बहुत सुंदर लाइन आती है कि त्वम ही दुर्गा दश प्रहर धारिणी। तो सर, विमेन एम्पावरमेंट इन आर्म फोर्सेस, अगर हम इस लाइन का परिपेक्ष वंदे मातरम में खोजें तो वो कैसे आप देखते हैं?
1: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, सीधा प्रत्यक्ष या परोक्ष दोनों रूपों से हम इसको देख सकते हैं। और हमने पहले भी बोला कि हर युग की कुछ संस्कृति होती है, हर युग में कुछ जोर होता है
0: जी।
1: तो हमारे युग का 21वीं शताब्दी का जोर है कि नारी सशक्तिकरण हो, और यह आर्म्ड फोर्सेज में भी, CAPF में भी, पार्लियामेंट्री सिस्टम में भी, और आप देखेंगे कई तरह की नौकरियों में भी ये चीज दिख रहा है। और आप ग्रॉस इनरोलमेंट देखेंगे हायर एजुकेशन में तो महिलाएं बहुत अच्छी स्थिति में आ रही हैं। इस गीत में यदि हम देखेंगे तो शक्ति के रूप में दुर्गा को लिया गया और उसके 10 आयुध की बात कही जा रही है। तो और उसके अलावा सिर्फ दुर्गा ही नहीं है, सरस्वती भी है, लक्ष्मी भी है, जो तीन प्रोमिनेंट भगवानों की चर्चा हो रही है वो तीनों ही नारी हैं, तीनों ही महिलाएं हैं। और यह तंत्र से आ रहा है, जो हमारे इतिहास में जो तंत्र का विकास हुआ वहां नारी को काफी प्राथमिकता दी गई, वहां शक्ति का आह्वान हुआ। और यह कहा गया कि जितने भी भगवान हैं, जितने भी ईश्वर हैं, सबको शक्ति पर आधारित होना है, शक्ति अल्टीमेट है। दुर्गा का भी उसी प्रकरण में जिक्र आता है पुराणों में, और वंदे मातरम में बंकिम ने उनको काफी प्राथमिकता दी, दुर्गा को, सरस्वती को, क्योंकि सिर्फ शक्ति से काम नहीं चलेगा, विवेक भी जरूरी है, बुद्धि भी जरूरी है। तो सब चीजों को मिलाकर के एक सशक्तिकरण का भाव है। और आर्म्ड फोर्सेज में पिछले दिनों की अपेक्षा अब वर्तमान में महिलाओं को काफी जगह पर प्राथमिकताएं मिल रही हैं, वो आगे बढ़ रही हैं। और लड़ाकू विमान का आपने जिक्र किया, इट्स वेरी गुड टू नो कि इस तरह से आगे आ रहे हैं। इससे जो महिलाएं पीछे रह रही हैं, जो लड़कियां पीछे हैं, वो भी इंस्पायर होती हैं,
0: बिल्कुल
1: उनको भी एक मिलता है कि नहीं, हम भी आगे बढ़ सकते हैं। अभी आपने देखा कॉमनवेल्थ गेम्स में बॉक्सिंग में
0: जी।
1: और मैं तो लगातार देख रहा था कि जो बॉक्सिंग में जो जिन लड़कियों ने मेडल्स जीता, गोल्ड मेडल्स जीता, अद्भुत कार्य किए। यदि भारत की इज्जत को सुरक्षित रखा वहां पर कॉमनवेल्थ गेम्स में तो महिलाओं ने रखा।
0: तो कहीं ना कहीं त्वम ही दुर्गा दश प्रहर धारिणी ये वर्तमान परिपेक्ष में भी सर चरितार्थ हो रहा है।
1: एकदम चरितार्थ
0: जी। सर, मैं आपसे एक चीज जानना चाहूंगी कि जो हमारे एनडीए के कैडेट्स हैं, आर्मी के कैडेट्स हैं, जो यंग एकदम सोल्जर्स होते हैं, अगर उनको आप वंदे मातरम के ऊपर कुछ संदेश देना चाहेंगे तो वो क्या होगा सर?
1: एक तो उसको नियमित गाना चाहिए और उसको आत्मसात करना चाहिए। जो देश सेवा है, जो जब आप देश के लिए लड़ते हैं, उससे बड़ी सेवा हो नहीं सकती। और इसी समर्पण भाव से लोग आर्म्ड फोर्स से ज्वाइन भी करते हैं और उसमें आगे भी बढ़ते हैं। ये सिर्फ एक रूटीन जॉब नहीं है, ये रूटीन जॉब से थोड़ा डिफरेंट है
0: जी।
1: थोड़ा सा अलग है, क्योंकि आप अपने जान माल की चिंता किए बगैर, अपने परिवार की चिंता किए बगैर, अपनी सुरक्षा की परवाह किए बगैर फ्रंट पे लड़ते हैं। और डिसिप्लिन, जो अनुशासन है आर्म फोर्सेज में, वह अनुशासन अन्यत्र मिलना मुश्किल है, क्योंकि वह अनुशासन अलग ढंग का है
0: जी।
1: और वह कमांड रिलेशनशिप अलग ढंग का होता है। बिना अनुशासन के आप देश की सुरक्षा कर भी नहीं सकते हैं। तो जिस अनुशासन से एनडीए के कैडेट्स, इंडियन मिलिट्री एकेडमी के कैडेट्स आगे बढ़ रहे हैं, उनको मैं यही कहना चाहूंगा कि आप इतिहास को भी थोड़ा पढ़ें, वहां भी बलिदान हुए हैं, आप उसी श्रृंखला में आगे बढ़ रहे हैं। तो इस देश को बनाने में, निर्मित करने में, आगे बढ़ाने में हजारों लाखों लोगों ने कुर्बानियां दी हैं, और हमारा आर्म्ड फोर्सेज उसमें बहुत आगे है।
0: तो सर, जब बात आती है देश के निर्माण की और देश की सुरक्षा की,

0: सिर्फ जो सैनिक हैं उन्हीं की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि हर एक आम नागरिक की ये जिम्मेदारी है देश के निर्माण में अपना योगदान दे। तो वंदे मातरम को लेकर हम चाहते हैं कि हमारे जो श्रोता और हमारे जो दर्शक हैं उनको आपका क्या संदेश है वो भी हम सुनना चाहेंगे।
1: जो श्रोता यहाँ है, दर्शक है, उनको यह कहना जरूरी है कि जो राष्ट्रभक्ति है वह सेल्फलेसनेस से आती है। यदि हम अपने स्वार्थ को, छोटे स्वार्थ को आगे रखेंगे, फिर हम राष्ट्र धर्म नहीं निभा पाते। छोटी छोटी चीजें होती हैं जिसमें कि हम अपनी चिंता करने लगते हैं, देश की चिंता नहीं करते हैं, समुदाय की चिंता नहीं करते। इसलिए हर नौजवान का, हर व्यक्ति का यह कर्तव्य होना चाहिए, सोचना चाहिए कि जो आपका जीवन है सिर्फ आपके लिए नहीं है, उससे आपके समूह को कितना फायदा हुआ, आपके समुदाय को कितना फायदा हुआ, आपके क्षेत्र को कितना फायदा हुआ, आपके परिवार को कितना फायदा हुआ, आपके वृहत समूह को कितना फायदा हुआ। यदि आप एक सेल्फलेसनेस के साथ काम करेंगे, स्वार्थहीनता के साथ काम करेंगे, तभी राष्ट्र धर्म की परिधि में आप आगे बढ़ सकते हैं। जिस तरह से वंदे मातरम इंस्पायर कर रहा है वह यही कह रहा है कि आपका जीवन सिर्फ आपके लिए नहीं है, आपकी मातृभूमि के लिए भी है, भारत माता के लिए भी है। इसीलिए उस भाव का यदि ध्यान में रखेंगे तो आप एक दूसरे का सहयोग करके आगे बढ़ेंगे। हम लोग उपयोगितावादी सिद्धांत में या व्यक्तिवादी सिद्धांत वाला देश नहीं है, यह समूह के, राष्ट्र के एक साथ आगे बढ़ने का सिद्धांत को लेकर के। और इसी संदर्भ में रुचि जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक हरिवंश राय बच्चन ने 1948 में लेख लिखा राष्ट्रीय गीत पे, वो मुझे बड़ा अच्छा लगा तो आपको सुनाना चाहूंगा उसके कुछ अंश। सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम शस्य श्यामलाम मातरम वंदे मातरम, जो नगपति के उच्च शिखर से राजकुमारी के पदनख तक, गिरी गह्वर में, वन प्रांतर में, मरुस्थलों में, मैदानों में, खेतों में और खलिहानों में, गांव गांव में, नगर नगर में, डगर डगर में, बाहर घर में, स्वतंत्रता का महामंत्र बन कंठ कंठ से हुआ निनादित, कंठ कंठ से हुआ प्रतिध्वनित, जपकर जिसको आजादी के दीवानों ने कितने ही दी मिला जवानी, मिट्टी में काले पानी में, कितनों ने हथकड़ी बेड़ियों की झन झन झन पर जिसको गाया और सुनाया मन बहलाया, जबकि डाल वे दिए गए थे देश प्रेम का मूल्य चुकाने, कठिन कठोर घोर कारागारों में, कितने ही जिसको जिह्वा पर लाकर बिना हिचक के हंसते हंसते झूल गए फांसी वाले तख्ते पर, या खोल छातियां खड़े हुए गोली की बौछारों में।
0: बहुत सुंदर पंक्ति आपने कही, और इसी के साथ हम आशा करते हैं कि आज का ये स्पेशल पॉडकास्ट जो कि वंदे मातरम पर आधारित था आपके लिए ज्ञानवर्धक रहा होगा। और इसके साथ अपनी होस्ट रुचि को दीजिए अनुमति। नमस्ते, वंदे मातरम।
2: अभी आप सुन रहे थे द आकाशवाणी पॉडकास्ट। इस कार्यक्रम का विजुअल वर्जन आप देख सकते हैं द आकाशवाणी पॉडकास्ट यूट्यूब चैनल पर। यह कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र में रिकॉर्ड किया गया और दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया।

14 अगस्त 1947 भारत के इतिहास का वो रक्तरंजित दिन जब देश का विभाजन हुआ और लाखों लोगों ने इस बंटवारे की त्रासदी से विभाजन के कारण लोगों को अपना घर परिवार जमीन और संपत्ति भी छोड़नी पड़ी। असहनीय पीड़ा से जूझते इन मजबूर और विस्थापित लोगों को निर्मम हिंसा का सामना करना पड़ा। वर्ष 2021 में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने विभाजन की असहनीय पीड़ा और दुख से गुजरे लोगों को याद कर और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करने हेतु विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस की घोषणा की। आइए 14 अगस्त 2026 को बंटवारे और उस समय हुई क्रूर हिंसा के शिकार हुए लोगों को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करें। अपने आसपास होने वाले साइलेंट मार्च में भागीदारी करते हुए उनकी याद में एक मिनट का मौन धारण करें।